0: अपूर्व आवाज इटर्नी एफएम 92.5
1: बॉलीवुड अनलिमिटेड दैट्स माय सॉन्ग
2: बैक टू बैक ओनली ऑन जॉय एफएम 92.5 मेगाहर्ट्ज़ जॉय

0: हजुर अपूर्व आवाज इटहरी एफएम 92.5
1: इटहरी एफएम नॉन स्टॉप हिट प्लेइंग यू द ग्रेटेस्ट हिट्स ऑफ ऑल टाइम
2: साहेबान कदरदान मेहरबान दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा